आज उप में बैठ नी तथा नीला ए आज या तिखी खुशी आज या कुछ ना हुई जीशो ए बात हुई नी हो जो आज या ना तहुशीर ए कौन ना शे ए ता तिखी शे सात आत हल्ला ए बत आंधो ए या अनिश अनीला ए दी ता खात ओ चिचितो जो ए आज या दे ये खेसीता ये अपनी नात्रे आज ये आहत आत और चिचिदात इधर तो बाहर ले हो तो न वाता ये आती आरोती हकार दसोत ये ले आखाशिंस्ट चिदोता नीला